0: the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: TV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio. You.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: रेडियो
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

महत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: और अब कितना आना है आ तो गए हैं टॉकिंग अबाउट द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो दैट्स ऑलरेडी देयर विद यू यू स्टे ट्यून्ड विद यू इट्स मी भावना एंड आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू क्योंकि ये गाना जब बज रहा था तो मुझे ट्रेन याद आ रही थी एंड आई नो कि अगर आप भी ट्रेन का यूज करने वाले हैं देन देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एंड वेरी बेनिफिशियल व्हाट यू कैन डू इज Whether you're heading out with a family, friends ko milne ja rahe hain, ya phir you're planning a group day out, Southeastern Group Save will make your travel more affordable. Especially when there are 3 to 9 adults who are traveling together, you can save 1/3 on the tickets, leaving more, of course, for you to spend on the day. So book now via the Southeastern app or website with no booking fee. And for full terms and conditions, visit southeasternrailway.co.uk/groupsave.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: किसके बारे में पहले कहूं, गाने के बारे में या आवाज के बारे में? आवाज के बारे में तो ये बोलूंगी कि देयर आर सम वॉइसेस जो सिर्फ सुनी नहीं जाती है, एक्चुअली महसूस हो जाती है. नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू जस्ट लिसन टू द सॉन्ग, जस्ट एंजॉय द सूफी सॉन्ग, आप नहीं रह सकते नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ सुने बिना, उसको अप्रिशिएट करे बिना. एंड दिस सॉन्ग एक्चुअली लुक्स लाइक यू नो इट्स अ पुकार दैट्स कमिंग फ्रॉम डीप इनसाइड. इट्स ट्रूली awesome song, and I'm very sure you must have enjoyed it at too.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So one British pound can get you 128.74 Indian rupees, Pakistani rupee would be 378.49, Sri Lankan rupee would be 433.85, Bangladeshi taka is 166.56, Afghani is 87.48, and USD is 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Yeah.
2: LAIKA Radio.
1: 90s throwback plays now.
2: LAIKA Radio.

0: Isha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Isha Basmati
1: Rice. हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com
2: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आवे छे एक इमोशनल कॉमेडी
3: अतमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
2: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतो
4: अरे वार्ता अधूरी छे भाई
2: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड
5: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे
2: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई
6: लोकेशन अहीना करेला अहीज भोगवाना छे
2: इन सिनेमास नियर यू
7: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्रायम शेप में है वो बचपन की याद
8: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्रायम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
7: जेमिन फ्रायम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: Fire up the barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup, all for under a super $6.50. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
11: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: इसमें जोर का झटका फ्रॉम एक्शन रीप्ले एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन इटसेल्फ. और अगर आप इसके पिक्चराइजेशन देखेंगे ना तो यू लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस सॉन्ग एज वेल. दिस आर्टिस्ट ऑफ द वीक ऐश्वर्या राय बच्चन सॉन्ग. एंड इफ यू आर लाइकिंग द वोकल्स इन दिस सॉन्ग देन किंग ऑफ मेलोडीज कुमार शानू इज ऑल्सो वन यू वुड एंजॉय. ही इज रिटर्निंग टू यूके फॉर वन नाइट ओनली. कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टीजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलिडे मंडे 25th of May. Get your tickets from the venue or Ticketmaster, exclusive radio partner like a radio network.
1: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: देख के उसको
1: बार बार दिल खोता है लाइक को सुन के दीवाना है देखो फ्रॉम कभी खुशी कभी गम एंड ऑफ कोर्स वी बी गन विद द पावर पैक्ड एनर्जेटिक मलहारी फ्रॉम द फिल्म बाजीराव मस्तानी टू वेरी ग्रेट ट्रैक्स टू किक ऑफ द सेकंड आवर हियर एट ब्रंच एंड बीट्स
2: Is Leica.
1: Who are you? Well, I'm Anuj Radio, your weekend ka saathi. It is 12 past 11. And thank you so much for tuning in to Leica. You're listening to Brunch and Beats. Well, look, we've got a power-packed saathi. It is 12 past 11.

0: नजर
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
2: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजोल्स कचोर साउथहॉल
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
3: Plus beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
4: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
5: OMG!
4: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
5: Murder Mystery!
4: Yes, at Beck Theatre, the 7th and 14th of June. Get your tickets now before the killer gets away. mkdw.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket, even without a loyalty thingy?
7: हिमालय कार्पेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कार्पेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कार्पेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com
8: Himalayan carpets for loyal prices Himalayan carpets
9: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए
10: कल सिवा इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा
11: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन Releasing in cinemas on 1st May.
12: हल्के फुल्के moments को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: Fire up the barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup, all for under a super $6.50. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
14: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and karak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
15: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
16: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: Disha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch. Disha Basmati
1: Rice. यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
3: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही.
4: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो.
5: A story full of heart now on the big screen.
6: ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है.
3: पर कल तो मैं ये दिन याद नहीं रहेगा.
5: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
7: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
8: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
7: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: Bank holiday offers end this Monday in the Furniture Village sale. Don't miss your last chance to save.
10: Spring hits on Leica Radio Network.

0: Isha Basmati Rice, available at Kacha Bazaar, Whitechapel and Beckton Branch.
1: Isha Basmati Rice.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है। 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड। तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ। वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस। हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन। साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट हिमालय कारपेट्स.com।
6: जय

0: song is brought to you by Kumar Sanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th. This is Leica Radio. This is the Desi Vibe Show with Sonia. Leica
1: Radio. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Saprang Arts presents Ramjhat in association with Leica Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976-869-444.
4: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayana ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner like our radio.
5: हिमालय कारपेट्स की मेगा बैंक हॉलीडे सेल शुरू हो चुकी है 500 से ज्यादा कारपेट रोल्स 30% तक रिड्यूस्ड तमाम रूम साइज रेमिनेंट्स पर अप टू 40% ऑफ वाइनल्स और रग्स सब पर रिडक्शंस हिमालय कारपेट्स की बैंक हॉलीडे सेल इज नाउ ऑन साउथ हॉल ब्रांच में तशरीफ लाइए या विजिट himalayacarpets.com
6: हिमालयन कारपेट्स फॉर लोअर प्राइसेस हिमालयन कारपेट्स
7: K Furniture's stock clearance sale is now on. Enjoy massive discounts in-store on Italian beds, bedroom and dining furniture all available for immediate delivery. Buy a 3- and 2-seater recliner sofa for £999 and get a dining table and 4 chairs absolutely free. Hurry while stocks last. K Furniture, stores at Cricklewood, Harrow and Slough. Or visit kfurniture.co.uk.
8: Fire up the barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed 4. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices and tomato ketchup all for under a super £6.50. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs
11: Borderless World presents Atif Aslam live in the UK.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
11: Book your tickets now at AXS.
10: Zembe Productions, supported by Rianne's Music.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए
13: कल सिवाय इस पिंजरे में होगा जिंदा या मुर्दा
14: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख संजय दत्त अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 1st May
0: Leica Radio Network proud hospitality partner

0: Leica Radio.
1: Stick to the shopping list. Stick to the shopping list. Stick to the...
2: Unexpected bargain in the bagging area.
1: Oh, well, lists are made to be broken. Especially for the flaming incredible gas barbecue at Aldi. Just £99.99. The Garden Event, Thursday 7th of May. Aldi special buys. Once they're gone, they're gone.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
9: काश मेरा मेरी हो जाए, चाहे एक दिन के लिए सही।
10: एक मिनट के लिए मेरे आंखों में देखो।
11: A story full of heart, now on the big screen.
12: ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है।
9: पर कल तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा।
11: Aamir Khan presents Ek Din is now showing in cinemas. Book your tickets and watch it today.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए।
15: कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा।
16: वॉच राजा शिवाजी स्टारिंग रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन एंड विद्या बालन। रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 1st May।
17: आतिफ असलम लाइव इन द UK।
18: झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम।
19: The O2 London on Sunday the 14th of June.
17: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
0: Leica Radio Network. Proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app for details. Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.

0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती लाके दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
0: The greatest Asian love songs across the Laika Radio Network.